गुरु प्यारी साध संगत जी, कीर्तन की इतनी हाजरी आप जी ने प्रवान करनी जी। कीर्तन करद्या हो बेअंत गलतियां की खिमा बख्श देनी। आओ जी हम साढ़े अति सत्कार योग ज्ञानी दलजीत सिंह जी, विद्यार्थी दमदमी टकसाल, उन्हां पासों रोजाना की तरह सतगुरु जी की अमृतमई बाणी अते गुरु का इतिहास श्रवण करना करिए जी। आप जी ने असीस बख्शिश करनी, फतेह गजाउणी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

ज्यों ज्यों चलहै चुभै दुख पावहै, जम काल सह सिर डंडाही। हर जन हर हर नाम सुमाणे, दुख जन्म मरण भव खंडाही। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडाही। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख बड़ बड़ाही। जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडाही। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, करो बेनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल की वेला। इहा खाट चलो हर लाहा, आगै बसन सहेला। औध कटै दिन सरैणा रे, मन गुरमिल का सवारी रहो। इहो संसार विकार संसे मह, तरियो ब्रह्म ज्ञानी। जिसह जगाए पिया वैहो रस, अकथ कथा तिन जानी। जा को आए सोई बिहाजो, हर गुर ते मनै बसेरा। निज कर महल पावो सुख सहजे।

नाम जानका मुक्त जुगत हर का नाम जानको त्रिभुत भुगत हर का नाम जानका रूप रंग हर नाम जुगत का पर न भंग हर का नाम जानक वडियाई हर का नाम जान सोभा पाई हर का नाम जानका भोग जोग हर नाम जुगत का शना वियोग जन रहता हर नाम सेवा नानक पूजा हर हर देवा हर हर जानका मारख जिंदा हर तन जानका आप प्रभु दिंदा हर हर जानका ऊट सतानी हर प्रताप जाना वरना जानी ओत पोत जन हर रस राति सुन समात नाम रहमत आठ हर जन हर हर उजा पै हर का भगत प्रगट नहीं छो पै हर भगत मुक्त भव करे नानक जन संकेत तरि पार जाति हो हर को नाम काम दीन हर हर गुण काम सब ते उत्तम हर कथा नाम संत दर्द लथा नाम की महिमा संतरा तो वसा संत प्रताप तरथा नसा संत हाँ वट भागी पाए संत सेवा नाम दियाई नाम तुलका शवरना हो नानक गुरमुख नाम पावे जन को श्लोक बहु शास्त्र बह स्मृति पिख सर्व टोर पूज सुना हर हरि नानक नाम बृहस्पति जापता ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र समृत बखियान जोग व्यास करम त्रम क्रिया शक्ति आगमन मध्य फिर अनेक प्रकार की बह जतना पंदन होमे बह रतना शरीर कटाय होमे कर राति वरत निम कर बह पाती नहीं तोल।

धन्यवाद पिता हम वर्ग तेरे तुमरी कृपा महसूस मेरे कुए न जाना तुमरा तू चेत ऊचा भगवंत सगल समागरी तुमरा सूतर तर तुम देव स्वाग कर तुमरी कात्मे तुम ही जाने नानक दास सदा कुर्बान सलोक दीन हर प्रशोट करा गहान सवाई नानक कहू नी जय वृंदाव पद जयस्पति दस बस तुली पाछ पवे बस कान विखोड़ गवावे एक बिना दिए दस बिहले तुड़ा कहु कह करी अज ठाकुर सिंह ना चारा ताको की जस नमस्कार जक मलक प्रमिठ सरु सुख तक मन उठा जह जन अपना हुकुम आया सरु सुख नानु दिन पाया अगन तसाहु अपनी दि राखत पीत बर ध्यान दिला अपनी अमान कह बहुर साहु री अज्ञान मन रोस करी अपनी प्रतियोगिता भी खोआ।

प्रभसु प्रसन्न बसामा सूए प्रभत तिमा दूतम हो सर्वन धान प्रभतिरि मय आया बहु कशुन कनु हरया जित जित लाभ तित लग हरनाथ नानक जन कह कशुना श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे समुताय समुचिता नानक बिनवंता साध जनक अचरज कथा अष्टपद साध का संग मुख उजल होत सा संग सदि होत साध घन मिटे अभिमान साध घन प्रगट सुज्ञान साध घन गुजह ब्रह्म निरा सा संग संबोधन बेरा साध घन पाय नाम रतन साध का संग एक प्रजन साध की मह भाव वर्णा कौन प्राणी नानक साध सुबह ब्रह्म मन साध घन गोचर मय साध घन सदा प्रफुल साधक संगा वह वह पंचा ससंग अमृतरा पंचा ससंग सब गिरी साधक संग मनोहर वह साधक संग न कदम हंता वह ससंग सत मन पाव साधक संग वाय बिन ससंग नान प्रभु सुप्रसन्न ससंग दुष्म सामीत साधक संग वह पनीत साध संग किय सिंह नह वैद साधक संग न बीगा पैर साधक संग नाह कुमंद ससंग जान परमानंद साधक संग नाह होता साधक हंता जा स्वभाव आप ही जाना साधु बटाई नान साध प्रभु बनाय साधु संग कबूतर साधु संग सदा सुख पाय साधु संग बसता गोचर न साधु संग अजार सह साधु संग बसा थान ऊचा साधु संग महल पाय ऊचा साधु संग दृढ़ सब धर्म साधु संग केवल पार ब्रह्म साधु संग पाय नाम न धान नान साधु के कृपा साधु संग सब कुल धार साधु संग साजन वीत कुटाम न तारा साधु संग सो तान पाव जह तान ते सब कुवर साव साधु संग धर्म राय करे सेवा साधु संग सुबह सुर देवा साधु का संग पाप बुलायन साधु संग अमृत मन गायन साधु का संग श्राव धान काम नान साधु संग सफल चंडा साधु संग नहीं काश काल दशम पीड़ित होत निहार साधु का संग कलूख तर साधु का संग नरक पर हर साधु का संग ईहाउ है सोहि रसा संग विशर धाम विरा जो ईशा सोई फल पाव साधु का संग न व्यर्था जाओ पार ब्रह्म साधु रद वसा नानक साधु सोना रसा

संगत भाई हमारे साथ कसंग बेटे साहब रघुनाथ साथ बेटे संजोग साथ की महिमा भी ना जान है जीता सुना है तीता बकिया न है साध की उम्र देह गुण दे दूर साध की उम्र रही पार पूर साध की सुबह का ना ही अंत साध की सुबह सदा भी अंत साध की सुबह उच दे उच साध की सुबह मुझ दे मुझे साध की सुबह साध बने आयु नान साध प्राप्त यदना पाए सुदोक मन साचा मुख साचा सेवा न पी खै किस बिन कोई नानक ही लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होया पति ब्रह्म ज्ञानी सदा न देव जह जा।

कथिया न जय आदा की अर ब्रह्म ज्ञान सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञान के मित कहन बखान ब्रह्म ज्ञान के अद ब्रह्म ज्ञान जान ब्रह्म ज्ञान का अंतना पार नान ब्रह्म ज्ञान को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञान सर्व श्रेष्ठ।

कोट पंखी सर्व पाय कई कोट पात्र बिरख नि बजाय कई कोट पावन प्राण व्यासंत कई कोट देह कुमंडल कई कोट शशियर सूर्ण खियातर कई कोट देव दान इंद्र सर क्षत्र सकल समग्री अपना सूतार नानक जय जय पावे देह स देह न तार कई कोट राज सतांश सातक कई कोट वेद प्राण समृत रसा सत कई कोट गिर रत्न समृद कई गुणान प्रकार।

विकारी कबहु विकारी नीच का साजा कबहु अपकीर्तन है कबहु परा परा को है जो पर रखे तो भी रह गुरु प्रसाद नाम साज को है कबहु हुई पंडित करे वकियान कबहु अंतर लावे ध्यान कबहु दर्द दियो थे सनायन कबहु से साध को मुख ज्ञान कबहु की रहस्य तो पतंग की जियान के जन परम है परमिया ना ना रूज स्वागी दिखाए जो पर पावत वन जव जो तो पावत सोई हुए नानक जब ना कोई कबहु साध संगति हो पावा सहस्थान दे बहु नया अंतर हो ज्ञान प्रकाश हो सहसन कन हो बिना मान तन नवरति करंग सदा बस हो पार ब्रह्म का संग जो जाल में जला एक टना दे जो दिस जो समाय ना मेट गए गावा ना पाए बस राम नान प्रभु का साधु कुर्बान श्लोक सुखी बस मस्किन यावन वार तली बड़े बड़े अहंकार या नानक गर्व गलेश्वरी जह का अंतर राज अब मान सोने पाद के बोध स्वयं जो जाना मैं जब उन्वंत सो बोध भेष्ट का जन दास का वो कर्म वंत कहा है वह जन्म अमर है वह जोन परमात्मा अनुपम का जो करक मां समूर खांदा गया।

निर्मल सुर जब लग जाना मुझ दिकाश जताव इसकाओ सुख नाही कोई जाव इस जाना मैं किस करता तब लाग करो जो मैं फिरता जब तार है कुक बैर मीत तब लाग निह चल नाचीत जब लाग मोह मगन संगवाई तब लाग तनु रह दिख सजाई प्रभु कृपा दे बंधन दूटा गुरु प्रसाद नानक।

का सब त्याग है। संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुख सदा विकारी, संत का दुखी जन्म है हमारा, संत का दुख ना सोते टारा, संत का दुख को ना ठाऊ, नान संत पावत नहीं मराई, संत का दुखी अत बीजते टूटा है, संत का दुखी का काज ना पाए हू जाए, संत का दुखी का ध्यान फरमाई है, संत का दुखी उजड़ पाई है, संत का दुखी अंतर तीर्थ होता है, जो सास बिना मृत गिरोथ है, संत का दुखी की जड़ किसना है, अपन भी जापे ही खा ही, संत के दुखी का वरना रखना, नानक संत पवत नहीं ओ बैर, संत का दुखी हम बिल लाए, ज्यों जल भी हूं मछली तड़ फड़ाई, संत का दुखी भूखा नहीं राजा, ज्यों पाव के ई धन नहीं द्रापा, संत का दुखी छुटया केला, ज्यों बू आड़ तेल खेत महा दुहेला, संत का दुखी धर्म दे रहत, संत का दुख सद में थ्या कहत, करत नंद का दुरही पया, नानक जद पाव सुई थिया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत का दुखी का दर्ग मिला सजाए, संत का दुख सदा सहकाई है, संत का दुखी न मरा न जीवाई है, संत का दुखी पूजा न आसा, संत का दुखी उठ चला न रासा, संत का दुख न दृष्टा को जहा पावत, ऐसा कोई हुई पया, करत न मेटा कोई, नानक जाना सच्चा सोई,

कौन छुटकार आस हस्तिरा था स्वर जुठटम फ झूठ पासारी जंती जैन दिए तह बुझा न बिगाना ना बिसाना न कुछ ताना गुर की बात तुम लिखी ए आने भगत बिना बस डूबे सियाने हर की भगत करो मन में जीत निर्मल तुम्हारो जीत चरण कमल राख मन

जह जोश रूप जो संग समाव तह किस भूख कवन द्रवताव करन करावन करने आनन करते का नाह समार जब अपन स्वापन संग बनायु ताब कवन वाय वाव मित्र सुत पाए जन सर्व कला आप प्रवीण तह वेद देव कह कोची अंड जब अपन आप आवर तार तब सगन अब सगन कह विचार जहाँ अपन ऊचा अपन अब नीरा तह कौन ठाकुर कौन कहे अचीरा विस्मन अविस्म रह विस्मा नानक अपनी गात जान हुआ जहाँ शाले शेद अपेद समाया ऊह कस व्यावनवायाप आदि स देहु गण का नाह प्रवीश जह एक एक एक भगवंता तह कौन अचिंत कहला गचिंता जहाँ अपना पुरा पति कर तह कौन कथ कौन सुन हर भव।

गुरी के गुण गावस्त बोधि पूरे गुरु का सने उपदेश पार ब्रह्म निकट कर प्रीत सास सास समरा गोविंद मान अंतर की उतरा चिंदास अनित त्याग त्रंग संत जनक दूर मान मांगा शोड विनती करहु साध संग अग्न सागर तरहु हर तन की परिहु भंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार कीम कुशल सहज आनंद।

रतन कह साथ शरण जोग संसरण आय कर कृपा प्रवाह मिलाय मेट गए बैर पय सबरी नमृतनाम साध संग लय सो प्रसन्न पय गुरुदेव पूर्ण हो शिव किसी वाल जंजाल विकार ती रह ती राम नाम संरचना कहती।

कृपया निरंजन सोई जिन सेवियातिन पाया मान नानक गाविय गुणे निधान। गाविय सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई। गुर ईसर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हौ जाना आखा नाही कहना कथन न जाई। गुरा इक देह बुझाई सबना जिया का इक दाता सो मैं विसर न जाई। तीरथ नावा जे तिस भावा उन भाने के नाय करी जे ती सिर ठुपाई वेखा उन करमा के मिलै लई। मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा इक देह बुझाई सबना जिया का इक दाता सो मैं विसर न जाई।

एक बार ज्योत दुभाग साई भली कार तू सदा सलाम निरंकार। असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम कोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे। असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े यार कूड़े फिराहे असंख मलेच मल भाख खाहे असंख नंदक सिर कर है भार नानक नीच कह विचार। वार न जावा एक बार ज्योत दुभावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। संख नाव संख थाव अगम गम संख लो असंख कह सिर भार होई। अखरी नाम अखरी सा लाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाखरी लिखण बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन ए लिखे ते सिर नाहे जे परमाय ते पाहे जेता कीता तेता नाओ वण नावे नाही को थाव। कुदरत कौन कहा वी चार वार न जावा एक बार जो तुध भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। भरिए हथ पैर तन देह पानी धोतै उतरस खेह मूत बलिती कपड़ होए दे साबून लइए ओ धोए भरिए मत पापा के संग ओ धोपै नावै कै रंग। उन्नी पापी आखन नाहे कर कर करना लिख लै जाहो आपे भी जापे ही खाहो नानक तुमी आवो जाहो। तीरथ तप दया ददान जे को पावे तुलका मान सुनिया मनिया मन कीता पाओ अंतरगत तीरथ वल ना। सब गुण तेरे मैं नाही कोय गुण गुण कीता भगत ना होए स्वस्थ आथ बाणी ब्रह्माओ सत सुहान सदा मन चाओ। कवन सोए लावक कवन कवन चित कवन वार।

गोपिता गोविंद आखे सरिया के सिद्ध आखे केते कीते बोधे आखे दानु आखे देव आखे सुर नर मुंजन सेव केते आखे आखण पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे एते किते होर करे तां आख ना सकहे केई के जे उड़ भावे ते उड़ होए नानक जाने साचा सोई जे को आखे बोल विगाड़ तां लिखिया सिर गावारा गावार सो दर केहा सो घर केहा जित बै सर्ब सुमल।

पेय है, अजीत है, अपीत है, त्रिमान है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमीक है, रपीक है, अतंध है, अबंध है, निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अला है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निर्श्रीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अपूत है, अछूत है, अलोक है, अशोक है, अक्रम है, अप्रम है, अजीत है, अपीत है, अबा है, अगा है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, भुजंग प्रयात छंद, नमो सर्वमान समुष्टि निधान, नमो देव देव अपेक्षी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथ संगी परमाथे, नमो पान पान, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पानी, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत्य नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पानी, नमो बाद बादे, अनंगी नाम समस्ति स्वरूपे प्रपंगी परमाथे, समस्ति विभूते कलंकं बिनाने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे, नमो शस्त्र पाणि, नमो अस्त्र मण्डनो परम ज्ञाता, नमो लोक माता अपेक्षीय परमीय भोगी अभुक्ते, नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत आप्रेत देव सुतर्मे, नमो रोगहर्ता, नमो राग रूपे, नमो साह साह, नमो कूप कूपे, नमो दान दानी, नमो मान मानि, नमो रोग रोगे, नमस्तं स्नान, नमो मंत्र मंत्र, नमो यंत्र यंत्र, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्र, सदा सच्चिदानंद सर्व प्रणासी अनुपे रूपे समस्त निवासी, सदा सिद्धदा बुद्धदा बृजकर्ता, अधो ऊर्ध अर्धं अघो अघं ओघहर्ता, परम परम परमेश्वर प्रोष पालं, सदा सर्वदा सिद्धाता दयालं, अछेदी अपेदिया नाम नकाम समस्तो पराधि समस्तस्ताम, तेरा जोर चाचरी छंद, जले हैं, थले हैं, अपीत हैं, अपे हैं, प्रभु हैं, अजू हैं, अदेश हैं, अपेस हैं, भुजंग प्रयात छंद, अगाधे अबाधे नंदी स्वरूपे, नमो सर्वमान्य समस्ते निधाने, नमस्तवंग निर्नाथे, नमस्तवंग परमाथे, नमस्तवंग अगंजे, नमस्तवंग अपंजे, नमस्तवंग अकाले, नमस्तवंग अपाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वपेशे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो साह साहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो सोख सोखे, नमो सर्व रोगे, नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतंग, नमो सर्व पीतंग, नमो सर्व ज्ञान, नमो परमतान, नमो सर्व मंत्र, नमो सर्व जंत्रंग, नमो सर्व दृशंग, नमो सर्व कृषंग, नमो सर्व रंगे त्रिभंगी अनंगे, नमो जीव जीवंग, नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्त प्रसिजय कृपाल स्वरूप कुकर्म प्रणासी, सदा सर्वदा हृदय से दंग निवासी, चरपट छंद प्रसाद, अमृत कर्मे अमृत धर्मे, अखल जोगे अचल भोगे, अचल राजे अटल साजे, अखल धर्म लख कर्म, सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाणि सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भूता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल छंद प्रसाद, आद रूपनाद मुर्जौन पुरखपाल, सर्वमान त्रिमान देव पेव, आदुदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल, जत्र तत्र विराज दूत रूप रिसाल, नाम ठाम ना जा जाकर रूप रंग ना रेखे, आद पुरखदार मूर्त जौन आद अशेख, देश और ना पेश जाकर रूप रेख ना राग, जत्र तत्र दिशा विशा हुए फैलो अनुराग, नाम काम कहीं बिकताम हुन जाय, सर्वमान सर्वत्रमान सदैव मानतता है, एक मूर्त अनेक दर्शन की रूप अनेक, खेल खेला खेल खेल अनंत।

के रोजी ध्यान देके राजक रहीम है के कर्मं करी में के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र माने के सर्वत्र दाने के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पाणे के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राजा के सर्वत्र साजा के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाह के सर्वत्र पाह के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राजा के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र पुराण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप है के सर्वत्र थाप है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कली में के परमं फही में के आकलला में के साहिब कला में के हुसन वजू है तमामल रजू है हमें सुसलाम सली खदमुदाम गनी बुल शिकस्ते गरीबुल परस्ते बुलंद मकान जमील जमान तमीजुल तमाम रजूल निधान हरीपुल अजीम रजायक यकीन अनेकुल तरंग हैं अपेद हैं अपंग हैं अजीजुल निवाज गनीमुल के राज हैं निरुक्त स्वरूप हैं त्रिमुक्त विपूत हैं प्रभुगत प्रवाह हैं सुजुक्त सुधा हैं सदैव स्वरूप हैं अपेदी अनूप हैं समस्त उपराज हैं सदा सर्वसाज हैं समस्त सलाम हैं सदैव काम हैं निर्बाध स्वरूप हैं अगाध हैं अनूप हैं ओं आदि रूपे अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे शुभं सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे त्रिपुक्त स्वरूप हैं अच्युत हैं अछूत हैं के नरकं प्रणास हैं पृथ्वल प्रवास हैं निरुक्त प्रभा हैं सदैवं सदा हैं विपुक्त स्वरूप हैं परजुगत अनूप हैं निरुक्त सदा हैं विपुक्त प्रभा हैं अनुक्त स्वरूप हैं परजुगत अनूप हैं चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है लेख है अपरम है कर्म है अनाद जुगाद है अजय है अभय है पूत है अतूत है अनास है उदास है तंद है अबंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनित है लिख है दिख है लेख है अपेख है अडाह है अगाह है संभ है गंभ है नील है नाद है नित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट छंद प्रसाद सर्वंगंता सर्वंगंता सर्वं ज्ञाता सर्वं ज्ञाता सर्वं हता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल छंद त्वे प्रसाद नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्मं परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे नृपंगी स्वरूपे सर्वंगी रूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्र न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते साकं श्रीक हैं अमितोमीक हैं सदैव प्रवाह हैं अजय हैं अजा हैं भगवती छंद त्वय प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं मे सुसलाम है समस्त कलाम है के साहिब दिमाग है के सुचरा के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दहंद हैं के राज करहिंद हैं करीमुल कुमाल के हुस्न जमाल है गनीमुल खिराज हैं गरीबुल निवाज हैं हरीफुल चिकन है रासुल फिकन है कलंकं प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाय करीम है समस्तुल सुबह है के साहिब किरा है के नरकं प्रणास है भैस्तुल निवास है के सर्वुल गमन है मेसुल रवान है तमामल तमीज है समस्तुल अजीज हैं परंग परम ईश हैं समस्तुल अदीस हैं अदीसुल अलेख हैं हमीसुल अपेख हैं जमील जमा हैं अमीकुल इमा हैं करीमुल कमाल हैं के जुरत जमाल हैं के अचलम प्रकाश हैं के अमितो सुबास हैं के अजब स्वरूप हैं के अमितो विभूत हैं के अमितो पसा हैं के आत्म प्रभा हैं के अचलंग नंद हैं के अमितो अपंग हैं मधुपार छंद त्वय प्रसाद मुन मन प्रणाम गुनगन मुदाम अरबर अगंज हर नर परपंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनपवनास मुन मन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल थल मुदाम आन छिज अंग आसन पंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिश सुपंड जल थल महंत दिश सुबंत अनपवनास त्रित तर तुरास आजान बाहे के सदा ओंकार राज कथनी नाद खलखंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम छिज गात जिजना बातन झंझ गात निरंज बातन ठट पंडार अन ठट अपार आडीट तर मत पीठ कर्म आण ब्रण अनंत दाता महंतर बोल मना छंद त्व प्रसाद करुणा लहर पाल है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उभारण है तृतकैतरण है जग के करण है मनमान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्वपाश है सर्वनाश है करुणाकर है विश्वंबर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है

कृतय आकृता कृतय धरणी तृतयम तेजपुरह परमेश्वर आकृता कृतय अमृता अमृत है अजबा कृत है आमृता अमृत है नर नायक है खलकायक है सुंबर है करुणाल है नृप नायक है सर्पायक है पापंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है आकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हर्ता हर है परमात्म सर्वात्म आत्म बस है जस के जस है भुजंग पुरिया तु छंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राज नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रास ताम सिंह शांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो जुद जुधे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादन विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आशास नमो बाघ बंके भंगी स्वरूपे नंगी ना मित्र भंगी त्रिकाल नंगी अकामे कचरी छंद अजय अलय अपय अभय पूज अनास का सकंज पंज लख पख काल दयाल लेख पेख नाम काम गाह ढा नथ परमाथे जो निमो नि नरागे नरंगे न रूपे न रेखे अकर्मं अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणाम स्मस्तुल प्रणाश गंजुल नाम स्मस्तुल निवास निरकाम विभूते स्मस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतर्मंग विभूते सदा सचदानंग सतर्म प्रणासी करीमुल कुनिंदा स्मस्तुल निवासी अजायब विभूते गजायब गनीमे हरियंग करियंग करीमुल रहीमे चतुर चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते सुयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विपुते

पूर क्रिया उर्जियो सब ही जाग श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाह दसवीं कवियो बास बेनती चाव पई। हमरे करो हादे रचा पूर्ण हो जित की इच्छा, ताव चरण न मन रह हमारा अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुसभय तुम खाओ आपा दे मोहे बचाव। सुखी बस है मोर परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दया करिए, सब अरण को आसंगरिय। पूर्ण हो हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई और ना त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तार, यह चुन चुन सतर हमारे मारिय। आपा दे मुझे अबरिय, मरण काल का त्रास नवरिय। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तुजो करिहो रच्छा। राख मोहि राखन हारे, साहिब संसहाय प्यारे। दीन बंधुष्टन के हंता, तुम्हो पुरी चतुर दस्कंता। काल पाय ब्रह्मा बाप तरा, काल पाय शिव जो अवतरा। काल पाय कर प्रसन्न प्रकाशा, सकल काल का किया तुमासा। जमन काल जो भी शुरू कियो, बेदरा ब्रह्मा जो थियो। जमन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है तहे हमारा। जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत दक्षिण उपजायो। आदम ते के अवतारा, सोई गुरु सुन जो हमारा। नमस्कार सही को हमारी, सकल प्रजा जने आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पल मोह बध कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछान। चीटी ते कुंचर स्थूला, सब पर कृपा दुष्ट कर पूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए, साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने। कट कट के पड़ पड़ की जाने, जब उद करक करा करतारा। प्रजा तर तब देह अपारा, जब आकर्क करत हूँ कबू। तुम मैं मिलत देह तर सबूँ, जेते बदन शिष्ट सब तारे। आपा अपनी बूझ उचारे, तुम सभी ते रहत निरालम। जानत वेद भेद अर आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब आदि अनिल अनादि सबता का। मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताप कर पाहन अनुमान, तुम्हा मूढ़ कश भेद न जानत। महादेव को कैसदा, शिव निरंकार का चीनत। नह पेव आप अपनी बुध हजेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखाना जाय पुसारा, कहे बिसजा प्रथम संसारा। एक रूप नु स्वरूपा, रंग प्यो राव कहे पुपांड। जे रज से तजकीनी, उत्पुज खान बहुर रचगीनी। कहूँ फूल राजा हवै बैठा, कहूँ सुमट पे शंकर कैठा। सिगरी शेर दिखाए चंग पवा, जुगा स्वरूप सियंग पवा। परीक्षा मेरी तुम करो, सिख बार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठो तत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस्तुज तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे। पुरख जुन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारी। जो कल कोई कबार ते आय है, ताके काल निकट नह आय है। रच्छा है तहें सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दुष्टन जैन हर हो, ताके ताप तनक में हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट छाछ वै सके न कोई। एक बार जुन तुम्हें समझवारा, काल पास देता है उबारा। जिन निरनाम त्योहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग के तमें शरण तिहारी, आपा दिल है उबारी। सर्व ठौर मोह हो सहाय, दुष्टो के लह बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता। किल्बिक सकल देखो हरता, दुष्ट दोखियन को छय करता। श्री अस्तुज जप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावे, सोई दुख न तिसै व्यापत कोई। अड़िल सुनै गुंग जो, जाहि सुरस न पावई। सुनै मूढ़ चित लाई, चतुरताया वई। दुख दर्द पाओ निकट, ना तिन नर के रह। हो जो याकी एक बार, चौपई को कह चौपई। संबत सत्र है सैस पण जय, अर्ध सैस पुन तीन कह जय। भाद्रव सुधी अष्टमी, रव बारा तीर। सतत द्रव ग्रंथ सुधारा सुइया। पाए गहें जब ते तुमरे, तब ते कुआ कतरे। नहीं आन्यो राम रहीम, पुराण पुराण अनेक कह मत एक ना मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद, सब बहु भेद कहें हम एक ना जान्यो। शरीस पान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तुहे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के।

कर कृपा जिन नाम लाए हे से हर हर सदा त्याव है जिसनों कथा सुनाए है अपनी से गुरु गुरुद्वारे सुख पावे कह नानक सच्चे साहिब ज्यों भावै तिवै चलावै इहो सोहिला सब सुहावा सब दो सुहावा सदा सोहिला सतगुरु सुनाया।

जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचया, सो हर मन ना वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसया, पूर्व लिखया पाया, कह नानक केहो शरीर प्रवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया।

बहुत बड़ी खेड है साध संगत, इकल्ला ये नहीं है कि मन टिक गया, मन दे टिकाओ दे नाल परमात्मा दे चरणा दे विच जगह मिलती है। जे मन दा टिकाओ ना बनिया, मन दी एकाग्रता ना बनी, तो 84 लाख जून का चक्कर शुरू हो जाता। बिन नावें सब भरम दे, ये निकी जी ही खेड नहीं है। गुरु अमरदास महाराज जी कहते ने, ए इंसान अपने मन नू गुरु की बाणी दे नाल जोड़ लै, मन नू परमात्मा दे चरणा नाल जोड़ लै, मन तेरा टिक जावेगा। जदों तेरा मन टिक गया फिर तैनू परमात्मा दे चरणा विच जगह मिलेगी, फिर तैनू 84 लाख की जून दे विचों टका मिल जाएगा, उत्थे भटकना नहीं पाएगा। ते जेड़े हिरदे नाम नहीं जपदे, पातशाह कहिंदे ने बिन नावें सब भरम दे, नित जग तो टस सार। सारा ही संसार, संसार दे जीव जेड़े नाम नहीं जपदे उन्हां दा मन भी भटकदा रहिंदा है। हुण भटके होए मन की एकाग्रता किवें बनेगी? जिन्ना चिर मन गुरु दे चरणां नाल नहीं जुड़ेगा ते खेड इत्थे खत्म नहीं होनी, इत्थों शुरू होनी। मन मुख करम कमावणे मैं अंध गुवार। हुण होमे वाला भी रोग लग्या होया है, जेडे कर्म करदा है। पातशाह कहिंदे ने मैं ही करी जांदा, बस मैं आ करदा, मैं आ करदा। इस मैं भी तैनू भटकणा दे विच पाई रखा। गुरमुख अमृत पीवना, नानक शब्द विचार। पर जेडे गुरमुख हिरदे हन वो नाम रूपी अमृत पींदे हन।

देगा, गुरु दे देगा। गुरु दी मत जदों हिरदे विच वसावेगा, गुरु दे उपदेश नूं हिरदे विच वसावेगा। जिन्हां हिरदिआं ने, जिन्हां गुरमुखां ने गुरु दे उपदेश नूं सुणिआ, हिरदे विच वसा लिया, फिर होया कि गुरमुख हर जपिआ। गुरमुखां ने हरी दा नाम जपिआ। जिन जिन नाम धिआया तिन के काज सरे, हर गुर पूरा आराध्या दरगह सच करे। पातशाह कहिंदे जिन्हां जिन्हां ने नाम धिआया उन्हां दा मनुखा जन्म वाला जिहड़ा काज सी ना की करन वास्ते आए सी, उह पूरा हो गया ते उह सच्ची दरगाह दे विच फिर खरियां दे विच आ गए, गुरु दे प्यारियां दे विच आ गए। जिवें भाई तारू सिंह गुरु दे प्यारियां विच आ गए। ए सी अज दे हुक्मनामे जो गुरु अमरदास महाराज जी दी रसना तो सलोक और पौड़ी गुरु रामदास महाराज जी दी रसना तो उच्चारण होए। पातशाह कृपा करन बाणी हिरदे विच वस जावे, हिरदा गुरु दे चरणां नाल जुड़ जावे। यही अरदास है। आओ हुण भाई बलविंदर सिंह जी समूह जथे पासों वासागी वाहे कीर्तन सरवण करिए जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

जी की फतेह। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भंग और प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच।

0: खीर पूड़ा खा के आए हैं तो कुछ बोलो जी
1: साहब
0: लेजी हो जाते हैं।
2: Thank you.

0: ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइए साधक संग
1: जे मारे के गने जाए न कोसा हर का नाम उहा संतोषा
0: जे पैंडे महा अंध गुवारा हर का नाम संग उजियारा
1: जह पंथ तेरा को न शियानो हर का नाम त नाल पिशानो
0: जय महा भयान तप्त बहु काम त हर के नाम की तुम ऊपर शाम
1: जह त्रिखा मन तुज खरकै त नानक हर हर अमृत परखै
0: भगत जना की बरतन नाम संत जना का मन विश्राम
1: हर का नाम दास की ओट हर का नाम उतरे जन कोट
0: हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साध कमात
1: हर जन कह हर नाम निदान पार ब्रह्म जन तीनो दान
0: मन तन रंग रते रंग एक है नानक जन कह बिरत विवेक
1: हर का नाम जन को मुक्त जुक्त हर का नाम जन को तृप्त भूत
0: हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब परै न भंग
1: हर का नाम जन की बड़ी आई हर का नाम जन शोभा पाई
0: हर का नाम